0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शोभा बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: व्यवस्था छ।
1: परासीमा घर रंगरोगन, प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने एकमात्र स्थान
0: सत्य भगवती ट्रेनिङ कन्सर्न, कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ, रामग्राम 3 परासी, पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
2: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी, सम्पर्क 0785207747 र 98576746747।
3: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
4: डेंगु रोगबाट बस्नका लागि सर्वसाधारणमा अनुरोध। डेंगु रोगको महामारी धेरैजसो ठाउँमा प्रकोपको रूपमा फैलदै गएकोले यसको लक्षण देखिना साथ स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराइहालौ। लक्षणहरू: उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी वा मांसपेशीमा अत्याधिक दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, गिजा नाक मुखबाट रगत बग्नु, शरीर चिलाउने आदि।
5: डेंगु रोगबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्ने, पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुल भित्र सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने गरी जाली लगाउने, घर आँगन र वरपरको सफाई गर्ने, पानी जम्ने भाँडाहरू, टिन, खाली बट्टा, गमला, फुलदानी, टायर आदिमा पानी जम्न नदिने, गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको 2 पटक फेर्ने, घर वरपर रहेका पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्ने र ढल, पोखरी लगायत धेरै पानी जमेको ठाउँमा जलेको मोबिल वा मट्टी तेल हाल्ने गर्नु पर्दछ। थप जानकारीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासी।
6: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी, व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।
7: हत्तेरिका लास्ट गर्मी लगत यार, लगत बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सका। यही में मोबाइल फूट गई बा। लेकिन
8: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
9: जी हाँ, धीरज ट्रेडर्स परासी में हरेक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में LED TV, फ्रिज, कूलर, पंखा, AC, हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
10: संपर्क धीरज ट्रेडर्स, रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 98472220 और 98152220।
7: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी।
9: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, USG, ECG तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
7: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
8: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 98671-45737।
11: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
12: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
11: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
13: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आर सेन्टर पोइन्ट।
3: सम्पर्क आर सेन्टर पोइन्ट रामराम 11 जमुआर हुलास अटोक्राफ्टको ठिक अगाडि, मोबाइल 9857046130 र 9804400067।
14: जता दौडिए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्यो। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
15: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
3: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
13: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
3: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 0785208081।
13: साथै हाम्रो शाखा सुनवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 0785905088।

0: नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि रु 1,00,000 को दुर्घटना बीमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 0785201124 र 98472909011 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
1: ओहो, कस्तो सफा र चम्किलो कपडा! पक्कै पनि तिमीले गाई छाप सरफले नै धोएको हुनुपर्छ।
2: हो त, आजभोलि गाउँ सहर जताततै गाई छाप सरफ नै प्रयोग गर्छन्। साथै यसको खरिदमा साइकल उपहारको पनि व्यवस्था छ। अनि सुन्नुहोस् त, कपडाको दाग र धब्बा हटाउनलाई त एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वास प्रयोग गर्नुपर्छ नि। जसको खरिदमा आइफोन उपहारको पनि व्यवस्था छ। विचार गर्नुहोस् है।
3: हजुर, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरी नेपाली हुनुमा गर्व गरौं। उत्पादक साफी सरफ उद्योग, मायादेवी गाउँपालिका 1, पाकडी कपिलवस्तु। सम्पर्क 98264-48200।
4: अरे वाह, देखा थी, बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
5: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
4: चला, इतना बढ़िया सोच तोहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
6: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
7: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठी बारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
8: के भएको यस्तो? नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
9: इसुमी, पहिला त मोबाइल कम चला हो, दोस्रो आँखा चेक गराइहाला क्या।
8: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
9: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
10: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा, श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरवा आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि, फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
11: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
10: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली, रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 98119-0679-17 र 98695-34254।
12: सुनत बाड़ा हो, हाई टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
5: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
13: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
14: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरे 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
12: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559-74-74-00 और 9559-44-85-36।
15: ए चाचा, देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गइल बा का हो, हमके तो एकदम धुधुराह लौकत।
16: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा, आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गइल बाड़ी।
17: अच्छा तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा। अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
18: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मास उभरल टेढ़मेड आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
19: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 सुनोल रोड आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 9862728015 और 9857022।
20: सुनत बाड़ा हो कि ये जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
21: हतेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता।
18: भाई देखा तू सबके ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल पोरासी में जाके चेक करवाला।
19: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतियाबिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
16: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785201046 और 0785210033।

0: सफेद वासिङ पाउडर ही लगाएको चाहिँ
1: सही कहला हो। सफेद सर्फ कपडा के मुलायम बनाउले के साथै सुगन्धि भी बहुत अच्छा देला।
2: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कर जा सफेद सर्फ। जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गांव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
0: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
1: उत्पादक शान्तिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
3: कारे पुर भैया, आज कपड़ा बड़ा साफ और चमकदार लगता, कौने सरफ से फिचले हरे?
4: काहे तोके नाई मालूम बका, आजकल ते गांव से लेके शहर बाजार तक सब केहू गाय छाप सरफे लगावता, जेकर खरीद में साइकिल इनाम मिलता। साथे कपड़ा के दाग और धब्बा हटाए के बाते एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वाश प्रयोग कर जा, जेमे iPhone 13 उपहार के भी व्यवस्था बा।
2: जी हाँ, आप सब भी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कर जा और नेपाली होली कह के पहचान दिखावल जा।
0: उत्पादक साफी सरफ उद्योग माया देवी गाँव पालिका 1 पाकड़ी कपिल वस्तु। संपर्क नंबर 98264 48 200।
5: क्षणिक रूपमा साथी भाइको लहलहैमा लागेर लागु औषध सेवन गर्दा यो कुनै दिन लत बन्न सक्छ।
6: लागु औषध सेवन तथा ओसार पोसार कानुनी रूपमा अपराध भएकाले जेलमा जीवन बित्न सक्छ।
5: यसले खुसी बढाउँदैन, घटाउँदछ। यसले स्वतन्त्रता दिँदैन, निर्भरता बढाउँछ।
6: लागु औषधलाई टाढै राखौं, उज्यालो भोलि आफै बनाऊ।
5: लागु औषधको प्रयोगले आफू, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै अतुलनीय क्षति हुने भएकाले यस्ता पदार्थबाट टाढै रहने प्रण गरौं।
6: लागु औषध सेवन नगरौ, आफू बचौ, अरूलाई पनि बचाऊ।
5: अनुरोधक इन्द्रणी सामाजिक विकास मञ्च UMN बाल अधिकार परियोजना प्रतापपुर गाउँपालिकाद्वारा जारी सन्देश। ल, बिहेको अरू तयारी त भयो, अब गर गहना।
7: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है बाबा। बाबा,
8: गहना त ढकाल ज्वेलर्स भूमिबाटै बनाउनु पर्छ है। अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
9: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्षे कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचाँदीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्। साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
8: सुनचाँदीका गरगहनाका लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स, सुनोल बारा भुमही, प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल। सम्पर्क 98677 80 632, 98075 92211 र 98495 71979।

0: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
1: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्त सम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
0: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
1: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
2: जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप लाइन जान्छ, एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
3: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो, त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, के को चिन्ता।
4: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
3: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौ।
5: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामग्राम 5 परासी, थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटर को ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 98115-64092 र 98238-36460।
6: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल, ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
7: ला, सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
6: ल ल, केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
7: हजुर, वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
5: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवलपरासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0720-520-510, मोबाइल 98570-80510।
8: सुनत बाड़ा हो, हाई टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूँ के मन नहीं करला।
9: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
10: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
11: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरे 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
8: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 95594-74700 और 95594-45-36।
12: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
9: ASSN र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव, हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी, हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मियाँ हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा ऐन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
13: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म, र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
14: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
12: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक, रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0785906699 र मोबाइल 98577427282।
15: अब तपाईँको टोयलेट जाम भयो वा भरियो भनेर तपाईँ भौतारिनु पर्दैन, मात्र एक कल फोन राम बच्चन सेनेटरीलाई गर्नुभयो भने हामी तुरन्त आइहाल्छौँ।
16: हाम्रा सेवाहरू
17: अत्याधुनिक भ्याकुम क्लिनर मेसिन द्वारा गन्ध रहित तरिकाले सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिने,
16: विद्युत नभएमा पनि जेनेरेटरबाट काम गरिने,
17: थप जानकारीका लागि सम्पर्क राम बच्चन सेनेटरी रामग्राम 1 परासी।
18: सम्पर्क मोबाइल 98069707482, 98007075713 र 98674995513।
19: ओहो, कता हो दाइ, रन के रे हिन्नु भएको छ नि?
0: हेर न भाइ, घर बनाउन लागेको सामान जहाँ गयो त्यही महँगो, म त दिक्क परे। यसो कबाडतिर सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर हिँडेको।
19: ल कबाडमै कता, न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस परासीमा जानुस् न, त्यहाँ त कबाड भन्दा पनि सस्तो र राम्रो सामान पाइन्छ।
20: हो, हामी कहाँ निर्माण सम्बन्धी छड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, एङ्गल पत्ती, पाइप, एचआर सिट तथा मूर्तिहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
19: एक पटक आएर त हेर्नुहोस्।
20: न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, नापी कार्यालयको ठिक अगाडि। सम्पर्क 98450-59960 र 98118-21559।
21: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी।
22: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
21: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
0: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 98671-45737।
23: नमस्कार, म कलाकार रवि डंगोल, काव्यमान, अहिले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शोभा बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर इहे भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तीन तीन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
1: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
2: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए चाहिए।
3: सही कहला हो, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथ सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
4: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कर जा सफेद सरफ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
2: पुनश्च सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
3: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता, भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।

0: ओ माय गॉड, इते अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगा ता फिर पड़क गईल।
1: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
2: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपत मूल्य में मिलला।
3: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठूठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918-51-09-81।
4: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
1: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गईल, लेकिन देखते बड़ा टाइल, मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
4: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
3: जी हमन की यहाँ टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, टोटी, बाथरूम फिटिंग, किचन डेकोरेशन, मोटर, पानी टैंकी, शावर, मिक्सर, सीसा, टेबल टॉप, कम्बोर्ड सीट, CPVC, PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
2: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठीबारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल, मोबाइल 9120-42-52-31।
5: सुनत बाड़ा हो, हाई टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
1: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
0: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
6: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
2: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठीबारी, सहारा बैंक के नीचे, मोबाइल नंबर 9559-74-74-00 और 9559-44-85-36।
7: म सानै उमेरमा बेची बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाँचेर, तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ, यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र, खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
8: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे, झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति, जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु। दिदी,
9: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
10: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
9: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
11: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
12: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज,
11: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य आवर डटर्स इन्टरनेशनल।
13: बा, के भयो र किन रुनु भएको?
14: कहाँ रोएको र बुहारी, आँखाबाट त्यसै आँसु बगिरहन्छ, घाममा हेर्नै सक्दिन, मासु पोलाछ भन्छन्, खै के भयो भयो।
15: मम्मी मलाई पनि बुकेने बित्तिकै टाउको दुख्छ।
13: ए भनेपछि दुवैजनालाई आँखाको समस्या भएछ। ल बा हिँडिहाल्नु परासीको भगवती नेत्रालयमा आँखाको उपचार गर्न।
16: हजुर, परासीमा पहिलो पटक दृष्टि रोग विशेषज्ञद्वारा आँखा सेवा सञ्चालन।
13: हाम्रा सेवाहरू
16: मोतियाबिन्दु, आँखामा मासु पलाएको, आँसु नली बन्द भएको, आँखामा फुलो परेको, घाममा आँखा हेर्न नमिल्ने, टेढो आँखा भिजन थेरापीद्वारा सोझो बनाउने, अल्छी आँखाको उपचार, कम्प्युटर प्रविधिद्वारा आँखा जाँच गरी पावर, बिना पावर चस्मा तुरुन्तै तयार, सम्पूर्ण किसिमका कन्ट्याक्ट लेन्स, सबै उमेर समूहका लागि ब्रान्डेड चस्मा, कम्प्युटर मोबाइल ल्यापटप टिभी लगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोगकर्ताका लागि विशेष किसिमका चस्मा उपलब्ध छ।
13: सम्पर्क भगवती नेत्रालय, रामगराम 3 परासी सुनवल रोड, आँखा अस्पतालको ठिक अगाडि। मोबाइल 9862728015 र 9857022215।
17: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
13: ला सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
17: ल ल केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
13: हजुर, वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड, प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0775205510, मोबाइल 9857080510।
18: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पश्चिम नवलपरासीको पहिलो रेडियो, सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: सितारों की मस्ती, संगीत के नशा,
2: माया हो सिन, पागल बनाए महीन।
3: आपके नचाए झुमाए वाला गीत,
4: बुलेट पहुँचा, बुलेट पहुँचा, ले चले घुमावे बुलेट पहुँचे।
3: आपके दिल बहलाए वाला गीत,
5: जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है।
6: फरक दिन फरक प्रस्तुति।
1: जी हाँ संगनिये, भोजपुरी गीत संगीत के अनुपम उपहार।
7: बढ़निया दिहिया से सर के, जिया रही रही के बहके।
8: सुने के न भुलायल जाई कार्यक्रम गीत बहार।

नमस्कार जयराम जी के आप सबके स्वागत करत बाड़ी कार्यक्रम गीत बहार में। और गीत बहार के आज हमन के अतवार के दिन में उपस्थित हो गए बाड़ी जा। अतवार के दिन आपके जरूर मालूम बटे कि आज गीत गाए वाला दिन हो गए, गीत गुनगुनाए वाला दिन हो गए। आप सबके आवाज में खूब बढ़िया खूब अच्छा अच्छा गाना हमन के आज एक घंटा समय अवधि भर सुनल जाये। और जात जात एक जना के हमन के विजेता बनावल जला, जौन संगरी अपने विजेता उखल जला। कार्यक्रम में हमन के साथ में रह के प्रत्यक्ष रूप में बातचीत करे के अवसर भी हमन के आपके खातिर हमन के प्रदान कर दिया जाये। जेकर लिए आप सब एक छीन के बाद फोन डाल करल जाये, कहें कि स्वागत स्वरूप हमन के नेटवर्क खूब बढ़िया गाना हमन के सुनावल जाये। प्राविधिक में शंभू जी बाने हमन के, शंभू जी के आज मनपसंद के खूब अच्छा अच्छा गाना बजावल जे कहीं के एकदम नहीं हमन के बातचीत भी भइल बाटे, सलाह भी भइल बाटे। तो ये नाते आज के कार्यक्रम में आपके एकदम नचावल जाये, झुमावल जाये। बस आपके फोन डायल करे के परी एक छीन के बाद 98 18 17 51 51 इहे नंबर में फोन करल जाये और हमन के बातचीत करे खातिर एक छीन के बाद उपस्थित होकल जाये।

0: यहू से बढ़िया गाना भी बजी, बस एक घंटा इंतजार आपके करे परे, कहें कि समय हमन के एक घंटा के समय हो, 11 बजे से 12 बजे जब हर एक दिन फरक दिन फरक विषय वस्तु में हमन के बातचीत कर जाता। आजकल हमन के गीत बहार कार्यक्रम के बातचीत कर दी, तो हमन के सकभर हमन के जिला भर में ना, अब तो जिला में तो रेडियो धीरे धीरे बंद हो चल गए, नहीं आरजे लोगन भी कहाँ कहाँ चल गए मालूम है ना बाटे, कहें कि हमन के आस पास के जिला में भी हमन के देखा जाए तो भोजपुरी कार्यक्रम हमन के सुने उने के ना मिली ना ये समय में। तो लेकिन हमन के रेडियो परासी जौन 17-18 वर्ष के पीरियड से जौन आपके माज में भरपूर मनोरंजन कराए के वास्ते जौन निरंतर रूप में कार्यक्रम संचालन करत बाटे, हमन के कार्यक्रम एक हफ्ता जौन सातों दिन चलत बाटे, एक जना आरजे नाई हो, दुई जना नाई हो, तीन जना नाई हो, हमन के पाँच पाँच जना आदमी लोगन कार्यक्रम संचालन कर जाता कि आपके मनोरंजन कैसे और ज्यादा मिली, यही उद्देश्य हो गए। तो यह नाते आप सब कहें पछुआ जी नहीं, फटाक से मोबाइल उठावल जी, हमन के नंबर एकदम खुला बाटे 98-18-17-51-51, यह नंबर से हमन के आप सबसे बातचीत कर ली, और जे विजेता होला विजेता होके वाला संगरिया के हमन के गीत गाए के अवसर भी हमन के उपलब्ध करावल जाला। और एक हमन के बहुत दिन से लंबा समय से लगभग हम जहाँ तक 5-6 वर्ष के पीरियड हो गए निरंतर रूप में एक गिफ्ट पुरस्कार स्वरूप हमन के प्रदान करत आवत बने, उपलब्ध करावत आवत बने, जेकर लिए हमन के धन्यवाद दिए के परी परासी डिजिटल फोटो स्टूडियो के प्रोप्राइटर जय प्रकाश नापित जी की। कहें कि अब हमन के बड़ा लंबा समय से आप सबके सेवा में जब पुरस्कार एठो छोड़ के गिफ्ट मार्फत जोन हौसला बढ़ावत आवत बने, जोन सहयोग करत आवत बने, ओकर खातिर ते परासी डिजिटल फोटो स्टूडियो के एकदम समझे के परी नहीं। कहें कि पुरस्कार सबसे बड़ा चीज तो नहीं हो, लेकिन कोनो भी कार्यक्रम में अगर थोड़े से भी पुरस्कार रख दिया जाए तो कार्यक्रम के रौनक कार्यक्रम के शोभा जौन रहेला थोड़े से जरूर बढ़ाला, कहीं एकदम हमन के आशा और विश्वास भी रहेला, ओके जौन निरंतर रूप में साथ देता आवत बने परासी डिजिटल फोटो स्टूडियो के विशेष करके धन्यवाद रही। पहला कलर के रूप में हमन के फोन संपर्क में कौन सा एरिया बने, हेलो नमस्कार, हेलो नमस्कार, नमस्ते नमस्कार, अब अजिया थोड़े से जोर से बोल दिया जाए, कहें कि जोर से बोला जाए तो रेडियो सुनने वाला आदमी लोगन खूब मजा से सुनिए, कहाँ से के बोला जाता, बंजरिया से अपन शुभ नाम बता दिया जाता है, कौन सी परियार कल गई, प्रमोद परियार बंजरिया से चल जाए ठीक बाटे, हमन के प्रमोद जी के हाल खबर ठीक ठाक हुई, बहुत पहले पहले तो अमरोड बंजरिया बहुत जात रही जा, जोन समय में डैनाव पढ़त रही जा का कहें कि अब डैनाव अमरोड बंजरिया तो खासे दूर तो नहीं बा नहीं, तो ये नाते हमन की अब पढ़ाई के सिलसिला में अब तो पढ़ाई की बातचीत भी कर लेते, अब बहुत साल पहले अब डैनाव में नहीं पढ़ाई के सिलसिला में अमरोड बंजरिया लोगन के धर्मपुर तमाम साथी भाई इष्ट मित्र लोगन बाड़े का, हाँ जे जे सुरेश यादव कह के अभिन भी पहचान लें, ले ठीक बात है, आपके एकदम ढेर ढेर धन्यवाद रही, और कार्यक्रम में रही कि हमन के आपकी आवाज में एठो हमन के छोट मीठ गाना एठो हमन के सुने के परी, कहें कि आज गीत गाए वाला दिन होके तो वही के मारे कौन एठो छोट के गाना गुनगुना दिया जला, गावल तो एक छीन गावल देने आजकल तो गीत के ना आया वाला का, एक दुई लाइन तो आदमी जय जवान आदमी गा दे ना गा दे, एक आध लाइन गावल जा प्रयास करल जाने, आजकल आदमी के ना आया वाला गीत गाय खातिर, हाँ कौनो कौनो एठो गाना अगर दिमाग में आवत हुई तो जितना सकल जी उतना गाय सकल जी, ला
1: हम जैसे कोई आपको डिलीवर न मिले, बस
0: चला जा, कितना बढ़िया सुनात रहा का प्रमोद जी, इतना अच्छा सुनात रहा, अगर एक मिनट और गईले रहती जा तो तमाम जना के तो एकदम दिल छू देत का कनवा, पहले दिन भैले के नाते से थोड़ा से परेशानी पड़ल हुई, लेकिन ठीक है कोनो बात नहीं बाटे, गीत हरेक आदमी सुनत बने हरेक आदमी गावत है नहीं, तो ये नाते आए वाला दिन में हमन के और प्रयास करल जाए ठीक बा, कार्यक्रम से सुटा दे नमस्ते। प्रमोद परियार जी रहना मन के बंजरिया से फोन कैल रहना, बड़ा खुशी लगल एकदम, कहें कि रेडियो के आप सब माया कैल जला, रेडियो के सुन के साथ देत बाड़ी जा, तो सुनले से का होला कि हमन के मालूम नहीं चलेला, लेकिन कभी काल अगर फोन कर दिया जाए तो फलाना गांव से कभी काल फोन कैल जाए, कभी काल दूसर गाँव से फोन आई, तो रेडियो जन सुन के जौन आदमी लोग बैठल बने वो आदमी लोगों के एकदम ढेर मजा आई, कहें कि जे निरंतर रूप में फोन करत बाटे ओकर फोन तो रोज आवत बा, लेकिन कभी काल आप भी अगर फोन करल जाए तो कार्यक्रम के थोड़े से शोभा थोड़े से रौनक और बढ़ी। वही के मारे हमन के अनुरोध रही कि आप सभी समय मिली तो फोन करके साथ दे दिया जी। हेलो नमस्कार।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत पुरान आवाज हो हमन के, तीरथ राज चौधरी जी के हाल चाल कहा बाटे? ठीक ठाक बा, एकदम अच्छा बा, बढ़ियन बा, सब केहू दर खाता, लेकिन अब हमन के मधेसी समुदाय में ऐसे तो होनी नहीं काहे कि तीज आ गेल, कहे कि तीज आइल ठीक बाटे, अब बिहान तीज हो नहीं, अब हमन के बाबा बरदे गोरिया खास है कि एकदम परिचित बाटे, जौन सुनवल हमन के वार्ड नंबर 11 केरवानी में जौन अवस्थित बाटे नहीं, तो हमन के मधेसी समुदाय लोगन तीज में का करिए कि पूजा करे चल जाइ हैं, मठ मंदिर में पूजा करे चल जाइ हैं, बाबा बरदे गोरिया पूजा करे चल जाइ हैं, पूजा कैले के बहाना शंकर भगवान के दर्शन मिली और मेला भी देखे के अवलोकन करे के मिल जाला नहीं। लेकिन जौन तीज के एक दिन पहले जौन नेपाली समुदाय लोगन में हमन के खास एक देखल जौन दर खाए वाला जौन चलन बाटे, आज ते अब दर खाए वाला चलन हो, लेकिन हमन के मधेसी समुदाय लोगन ते अब दर ते का हो फिर नहीं, हमन के लिए रोज दर बा ले मीठ परिकार कोनो दिन पका के खाइल जाए तो अब खैले बराबर हो जाएगा, तो एक जौन चलन चलती जौन रीति रिवाज हरेक समुदाय में बाटे नहीं, उ ते अब कायम रहबे करी ले।

गर्मी महिना त धीरे धीरे रात बाटे, लेकिन पानी बिना के व्रत, बाप रे, अब कैसी बैठल है सब नहीं। अब जे बैठल अब भगवान शंकर भगवान उ सबके आशा भरोसा जोन बाटे जोन इच्छा बने अब पूरा करे, ये काम न रहले शुरू कर जाए।

0: एकदम बहुत ढेर ढेर धन्यवाद रही कहें कि हमन के गीत गाए वाला दिन में विशेष करके तीरथ राज जी जैसे अपने फोन करा जाला नहीं तैसे हमन के का अनुरोध कैल जाइए जवन श्रोता मित्र लोगन के जवन दिन आसान लगत बाटे अच्छा लगत बा बढ़िया लगल बा फोन करल जाइए ये कहत कहत हमन के तीरथ राज जी के फोन भी कट गए बाटे। अगर आप भी रेडियो सुनत बाड़ी जा तो एक घंटा कार्यक्रम गीत बहार जवन प्रसारण होत बाटे गीत बहार के समय आप तमाम प्रिय श्रोता मित्र लोगन के लिए हमन के कार्यक्रम छुटावल गए बाटे यह नाते आप सब फोन कैल जाए कि एकदम विश्वास भी रहला हमन के फोन संपर्क में फिर से कौन सा एरिया बाड़ा। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमन के बलिराम प्रसाद दास जी के फोन आ गए। एकदम हमन के बलराम जी से अब दूरी के हिसाब से थोड़े से लम्हे बा नहीं लेकिन नेरे रहत भेंट मुलाकात होके वाला कोनो अवसर मिलत तो कितना खुशी लगत का काहे कि बड़ा काफी दिन हो गए हमन के मुलाकात भी लगभग एक वर्ष दू वर्ष हो लगल की का दू बरस हो गए नहीं अब श्रोता मित्र श्रोता लोगन के बीच में हमन के जो संबंध मजबूत होके अच्छा होके कहीं एक रेडियो श्रोता मिलन कार्यक्रम संचालन करत आवत रहा नहीं तो एमें का भेल कि हमन के हाँ श्रोता मिलन कार्यक्रम जो नाम देले रही हमन के तो श्रोता मिलन कार्यक्रम अब रेडियो अब कबले करे नहीं अब श्रोता लोगन के लिए हमन के जमघट करा के एक

0: कलब गठन कल के नई श्रोता मिलन कह के हमन के श्रोता मिलन कलब में जौन सदस्य लोगन बाने थोड़े से ध्यान दे देते अगर तो का होत कम से कम साल में एक बेर तमाम श्रोता मित्र लोगन के बीच में एक आपस में प्रत्यक्ष से भेंट घाट करे के अवसर मिलत, बोले बतियाए के अवसर मिलत, एठो कार्यक्रम होते कितना अच्छा होत। उहे त कहत जैसे आप सब एक्टिव बाड़ी जा जैसे एकदम नहीं, अब का होला कि एठो कोनो भी संगठन में कोनो भी संस्था में अगर रहल जाए अपने तो एठो पद लेके बैठल जाए तो पद के महत्व का रह जाए जब काम धाम नहीं हो पाए। एकदम उचित बाटा, अगर सकाई तो कल जा नहीं सकाई तो हम न करे नहीं सकब कह के नहीं, अगर दूसर श्रोता के जिम्मेवारी देते तो हो सकत कि थोड़ा सा और अच्छा हो। अब केना जना केना मिला श्रोता मित्र लोगन के फिर मन भी दुखा सकेला बलराम जी नहीं, वही बारे ढेर न बोल के कार्यक्रम के विषय वस्तु पर जाए जा सीधे आपके आवाज में एठो हमन के खूब अच्छा गाना सुना जाता ला शुरू कर जा।
1: हमारे घर किसान है, उनके बिना जीवन वीरान है। पापा हमारे घर किसान है, उनके बिना जीवन वीरान है। पापा में बस के सबकी जान है, वही हमारे भगवान है। उनकी कंधों पर घर का भार है, फिर भी वो करते हमसे प्यार है। जिम्मेवारी है लाखों सामने, जहाँ उनसे परिवार है। रखना हमें

0: उनका बिना जीवन वीरान है।
1: एकदम बड़ा दर्दनाक गाना गावल गेल, कहें कि संसार दुनिया माई दादा बिना तो एकदम अधूरा बाटे नहीं। कहें कि हमन के बाप महतारी के नाते से जन्म लेहल गेल, संसार देखल गेल नहीं, ते नाते माई दादा के गुण कबो नहीं भुलाए के चाहें। यह कहत कार्यक्रम से आपके विदा करत बाड़ी। नमस्ते, बलराम प्रसाद दास जी रहने हमन के बड़ा लम्बे से फोन कैले रहने। आप भी माया करल जाइए, अपन गाँव ठाँव के रेडियो हो नहीं, आप सब साथ नहीं दिल जाइए, माया नहीं कैल जाइए, तो कार्यक्रम चलौले में थोड़े के परेशानी हो जैसे लगेला, लेकिन अभी तक वो हमन के महसूस तो नहीं भेल बाटे, फिर भी कार्यक्रम में सुन के साथ दिल जला लिए धन्यवाद बाटे। एठो गीत बजाए के समय हो गए बाटे, कहें कि मन के ब्रेक एक छीन लेल जाइए, ब्रेक के बाद हमन के फिर से आपके आवाज़ में गीत सुने खातिर हमन के आवल जाइए।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर इहे भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।

0: ल बिहेको अरू तयारी त भयो, अब गर गहना।
1: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है
2: बाबा। बाबा गहना त ढकाल ज्वेलर्स भूमिबाटै बनाउनु पर्छ है। अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको, कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
3: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्षिण कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचाँदीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्। साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
2: सुनचाँदीका गरगहनाका लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स, सुनोल बारा भुमही, प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल। सम्पर्क 98677-80632, 98075-92211 र 98495-71979।
4: कार्य पूर्व भैया, आज का पड़ो बड़ा साफ और चमकदार लगता, कौने सरफ से फिचले हरे
5: काहे तह के नाई मालूम बका। आजकल ते गांव से लेके शहर बाजार तक सब केहू गाय छाप सरफे लगावता, जेकर खरीद में साइकिल इनाम मिलता। साथे कपड़ा के दाग और धब्बा हटाए के बाते एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वाश प्रयोग कर जा, जेमे iPhone 13 उपहार के भी व्यवस्था बा।
6: जी हाँ, आप सब भी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कइल जा और नेपाली होली कह के पहचान दिखावल जा।
7: उत्पादक साफी सरफ उद्योग, माया देवी गाँव पालिका 1 पाकड़ी कपिल वस्तु। संपर्क नंबर 98264-48200।
8: आउनुहोस्, अब यस क्षेत्रकै हरेक किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक परासीमा।
9: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश ढकाल प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। छाती, मुटु, सुगर, थाइरोइड तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन अग्रहरी प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म।
10: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश घिमिरे प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
11: लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमील मिकरानी प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म।
12: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण श्रीवास्तव प्रत्येक दिन 3 बजेपछि।
11: र भैरहमा मेडिकल कलेजका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्व तुलाचन प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
13: साथै सम्पूर्ण प्याथोलोजी सेवा, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे, हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर तथा नर्मल अपरेसन र वैदेशिक रोजगारका लागि मेडिकल जाँच पनि गरिन्छ।
8: सम्पर्क जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक रामग्राम 5 परासी, फोन 0785-20746 र मोबाइल 98470-41106।
14: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने।
15: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
14: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
3: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना, नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
15: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट रामराम 11 जमुआर, हुलास अटोक्राफको ठिक अगाडि, मोबाइल 98570-46130 र 98044-00067।
16: जयराम जी के हम नरहरी प्रेमी हरदम सुनल रहल जा आपन रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज।

0: उस देर के छोड़ के व्यवसायिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करत बाड़ी आप सबके कार्यक्रम गीत बहार के आज अतवार के दिन में रह के हमन के आप सबके आवाज में खूब अच्छा अच्छा गाना सुने के प्रयास में बाड़ी जा। रेडियो सुनत होकल जी देख के सीन के बाद में अपने फोन डायल कर ले 9818171551 नंबर में कहें कि हमन के फोन संपर्क में कौन सा एरिया बाड़ा। हेलो नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, हाल चाल का बाट है? सब बढ़िया भाई, एक दिन कटत बाटे बिहान तो तीज होके रामनाथ जी। ये हमारा बजिया नहीं सुना था आपकी?
1: हाँ।
0: चलो जब थोड़े से जोर से हम बोला थी, अब कैसन सुना था? बढ़िया सुना था? कम में सुना था? देखा थी मोबाइल बदले के पड़ी कि बनवाए के पड़ी? चलो जब कभी कल ऐसे ऐसे हो रामनाथ जी, कहें कि कबू नेट वोट के समस्या के नाते भी वैसा हो सकल। बड़ा धीरे धीरे सुना था नहीं बोलमो तो एकदम फूल बाटे। अब केना फूल हो के अब ढेर फूल कह लेते मोबाइल में फिर चरचराए लगी का, कहें कि हमन के रेडियो में बोलूँ जब ज्यादा बढ़ावल जला ना तो का होला कि अजिया चर चर चर रेडियो में बढ़िया से ना सुना लगा। अब इनो सुनाई ले ना। चल जा ठीक बाटे ले। और हमन के रामनाथ जी तो अब वैसे तो अब गीत के दुनिया में देखल जाए, गीत संगीत में आपके आवाज के अगर हम तारीफ कर जाए तो हमें लगल कम श्रोता मित्र लोगन के आवाज रामनाथ जी के आवाज के साथ मेल खाला, एक मतलब बढ़िया गावल जला कही का। यही नाते हमारा वजह कम सुनाई लगा आपके। तो कारण का हो सकेला कहे तो कहे कनवो कम सुनाता? उमेरवा बीतत बीतत जाला था जैसे आंखिया मनन की आंखिया दुरदुराहा लौके लगा नहीं। हाँ शुरू कर। हाँ शुरू करे पड़ी एकदम छोट मीठ गाना गावल जी कौन ढेर लम्बे गाय लिए फिर दूसर मिला फिर नहीं। अब फोन कैले में थोड़े के समय

0: परिसंभुदान बड़े भोले गाले, परिसंभुदान बड़े भोले गाले, कभी खुश होकर के वो दान दिया करते हैं, कभी खुश होकर के वो दान दिया करते हैं, कभी नाराज में हैरान किया करते हैं, कभी नाराज में हैरान किया करते हैं, कभी मस्ती में गुड़े गान किया करते हैं, कभी मस्ती में गुड़े गान किया करते हैं, कभी मस्ती में गुड़े गान किया करते हैं, कभी नशे में गर्लपान किया करते हैं, कभी नशे में गर्लपान किया करते हैं, अरे भाने या धतूरा से भाने या धतूरा से राते मतवाले, अरे संभुदानी बड़े भोले भाले, अरे संभुदानी बड़े भोले भाले, माथे पे चंद्रमा हर वक्त चमकते रहता, कान कुंडल की तरह बिच्छू लटकती आते, कान कुंडल की तरह बिच्छू लटकती आते, भस्म बदन पे हर वक्त है मलते रहते, भस्म बदन पर हर वक्त है मलते रहते, कभी कैलाश कभी नंद पर चढ़ती रहती, कभी कैलाश कभी नंद पे चलती रहती, अरे डमरू बजा कर, अरे डमरू बजा कर भजन करने वाले, बड़ संभुदानी बड़े भोले भाले, बड़ संभुदानी बड़े भोले भाले, हाथ में त्रिशूल लिए गले मुंड की माला, भाई गौरी जी है गले से दूध में लाला, भाई गौरी जी है गले से दूध में लाला, कार्तिक श्याम भी मौजूद उम्र का बाला, मूर नंद झूमने माला, अरे जगदम्बा शरण के सहारे के निराले, बड़े संभुदानी बड़े भोले भाले, बड़े संभुदानी बड़े भोले भाले,
1: एकदम इतना अच्छा गाना यही हम कही लगी हम के रामनाथ जी जैसा आवाज बड़ा कम आदमी के बाटे का बड़ा मस्त गाना गावल गई बर्द गोरिया जाए के बा गाय के बा का हूँ चल जा ठीक बा कितना बढ़िया बात बा ठीक बा समय मिली तो हमन के भी उपराय जिले मुलाकात हुई जरूर छूटल जा नमस्ते लंकामा से फोन कैले रहें रामनाथ हरिजन जी यहाँ के भी विशेष के धन्यवाद बाटे अगर आप में भी प्रतिभा बाटे आप भी गीत गावत बाड़ी जा ते जम्मा एक घंटा के समय हो कार्यक्रम गीत बहार की फोन संपर्क में कौन सा एरिया बाड़े हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार
2: हेलो नमस्ते नमस्कार हम सब सुनील अंसारी नेपाल हिंदू श्रोता संघ 32 नंबर जीतपुर परसवा से बोल रहा
1: हूं जीतपुर परसवा से बोलत बाड़ी जा शमसुद्दीन अंसारी के आवाज आवाज एकदम हम पहचान गेली नहीं कार्यक्रम हमसे कई बेर बातचीत भइल बाटे शमसुद्दीन जी के नहीं जैसे हम कहती कि पहला बेर बातचीत होत बाटे हमसे कि ऐसे पहले भी अपने फोन कैले रहली जा नहीं नहीं बतिया आपके आपके बतिया हम बुझे थी जैसे हमारे साथ पहले बेर बातचीत होत बाटे कि ऐसे पहले हूँ हमसे बातचीत भइल रहल पहला बेर हो चलो जा ठीक बाटे उतना लम्बे कौन जगह कहली जा शमसुद्दीन जी परसवा से एक मतलब हमन के 12 परसवर के संगे तमाम जनी लोग फोन करल नहीं रेडियो के ढेर माया कह देना कल आपके धन्यवाद बाटे और शमसुद्दीन अंसारी जी से हमन के प्रत्यक्ष रूप में मुलाकात भइल बाटे कि नहीं भइल बा नहीं भइल बा ठीक बा समय मिली तो हमन के भेंट मुलाकात जरूर हुई ठीक बा कहत कहत फोन कट गई बड़ा दुख लगल का नया नया संगरिया लोगन से बातचीत करे के मिलला थोड़ा के ऊर्जा और बढ़ला नहीं लेकिन बात करत करत फोनवा कहे कटल के जन शमसुद्दीन रेडियो सुनत हुई हैं तो एक दिन के बाद जरूर वहाँ के फोन आएगी कि हम एकदम विश्वास ले ले बाड़ी हमन के फोन संपर्क में फिर से कौन सा एरिया बना है हेलो नमस्कार नमस्कार एकदम हम तो सोचिला कि जबले जिंदगी रहे हर्षमान जी से ऐसे बातचीत होत रहे बड़ा मजा आ जाला आप सबके फोन आ जाला तब एकदम मन बहुत खुशी हो जाला और कार्यक्रम में रेडियो सुन के बैठे वाला श्रोता मित्र लोगन के लिए भी मन में थोड़ा के उत्साह जरूर बढ़त हुई कि हर्षमान जी के गाना तो खूब अच्छा अच्छा गाना गावन आज कौन गीत गई है हाँ आज उद्घाटन बाट आज से शुरू हुआ कार्यक्रम वहाँ चलल जा ठीक वाला शुरू कर जा एकदम विशेष है कि धन्यवाद रही इतना बढ़िया गाना के लिए आए वाला दिन में हर्षमान सिंह से बातचीत हमन के एकदम होइबे करी छुटल जा नमस्ते संडा से फोन कैले रहना हर्षमान चौधरी जी अब एक छिन फोन न कैलिए कहीं के ठोमन गीत सुने के समय हो गए बाटे हम समझे के चाहत बाड़ी यहाँ से होम कुमारी चौधरी जौन सरावल के रही हमन के गैल का हफ्ता विजेता भी बैल रही विजेता होके वाला संग्रह के लिए हमन के कार्यक्रम में स्टूडियो में एक घंटा समय अवधि भर प्रत्यक्ष रूप में स्टूडियो में बैठ के आपसे बातचीत करे के अवसर उपलब्ध करावल जला जौन कार्यक्रम गीत बाहर के समय बाटे तीन चार ठो गाना भी आपके आवाज़ में सुनत बाड़ी जा ती अवसर बीड़र आदमी के मिलला कहें कि ढेर जना फोन करिए ढेर जना में से एक जना विजेता हुई हैं तो ई अवसर आप सब न गुमावल जी विजेता हो जाए जी तो कष्ट कह के दुख कह के कार्यक्रम गीत बहार के लिए रेडियो में आ जाए जी यह अनुरोध बाट हम गीत बज गए बाटे व्याकरण में गीत सुनल जी एक छोट के ब्रेक लिया जी ब्रेक के बाद हम फिर से आवल जी

0: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
0: इतने भर नहीं सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
2: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटा घर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737।
3: जता दौडिए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन रेट पनि त्यस्तै महँगो
2: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन
4: हजुर सुनिल हार्डवेयर मा गएपछि घरको चिन्ता खतम
3: हामी कहाँ छड सिमेन्ट गिट्टी बालुवा रंगरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ सेनेटरी प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर
4: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली रामग्राम 3 परासी सुनोवल रोड पुरानो सिनेमा हलको अगाडि फोन 0785208081
3: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ सम्पर्क फोन 0785905088
5: सुनत बाड़ा हो किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
6: हतेरी का हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाय फरियाता
7: भाई देखा तू सब के ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला
2: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँस के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार
0: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी फोन 0785201046 और 0785201033
8: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो
9: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी किनवे छावे के लेकिन
8: का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेगा एक बार जाके तो देखी
7: जी हाँ पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कईल जाला
3: संपर्क खातिर
7: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान मोबाइल 9874768730 और 9194460630
10: अरे जान ले बुका हंस के गोरी जान ले बुका
11: रउआ सब सुन रहल वानी रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: ई अन्तिम छोडके व्यावसायिक विश्रामके बाद हमनके फिरसे उपस्थित हो गेल बाडी सब। मोबाइलमे घन्टी बज गेल बाटे नै फोन सम्पर्कमे कोनो संघरिया भी हाजिर हो गेल भने यहाँसे बातचित गरल जाए। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते नमस्कार सर।
0: नमस्ते नमस्कार। एकदम हमनके संशोधित दिनसे बातचित करत कर फोनवा कट गेल। मन थोड़े से दुखाइल नै, मन थोड़े से दुखाइल कहें कि नया नया श्रोता मित्र लोगन आप जैसन एकदम रेडियो के बहुत जरूरी बाटे का। कहें कि आजकल के समय में अगर श्रोता मित्र लोगन रेडियो प्रति माया ममता नाई रख दी हैं तो तमाम रेडियो एक तो वही से बंद हो चल जात बाटे। आ कितना रेडियो श्रोता बिना अगर सहभागी नाई मिली तो आरजे लोग का करिए, कार्यक्रम बंद कैले के दूसर सिवा कुछ नाई रही। एकदम एकदम हमन के कार्यक्रम जोन गीत बाहर बाटे 17-18 वर्ष हो गई निरंतर रूप में चलत बाटे। विगत के दिन में भी हमन के सुने के मिले बस सबसे बड़ा बातचीत ये हो के शमसुद्दीन जी के आवाज में हमन के छोट मीट गाना हमन के सुन लिया जाला। शमसुद्दीन जी हार के बाद भी जीते हैं। चलो देखो बढ़िया कहे कि कबो हार कबो जीत हो करल नहीं। हाँ एकदम कहे नहीं वही के मारे संघर्ष करे के चाहे। हाँ एकदम कहे नहीं संघर्ष करे के चाहे। संघर्ष कैले के बाद तो एक दिन मने असफल हुई है, दुई दिन असफल हुई है, जब चाहिए तो एक दिन सफल कहे नहीं हुई है। ठीक आए वाला दिन में बातचीत करा दे छुटा दे। नमस्कार। शमसुद्दीन अंसारी जी रहा रेडियो परासी के माया करे वाला देश विदेश में रहे वाला तमाम श्रोता मित्र लोगन के एकदम विशेष के धन्यवाद दिए। एक परी कहे कि घर के साग का कहें घर के मुरई साग बराबर हो कि का हो नहीं वही मारे अब यहाँ के रेडियो हो कह के परासी के बातचीत करा जा ढेर दूर छोड़ दिया जा। परासी में रेडियो बाटे इतना पुरान रेडियो हो मेठो नाम के हिसाब से भी अच्छा बाटे आप सब भी जानत बाड़ी रेडियो के नहीं तो रेडियो परासी परासी में रह के तमाम आदमी लोगन सुनल हैं कितना जना काम करत करत भी रेडियो सुनल हैं कितना जना फुर्सत रहें तब रेडियो सुनल हैं कितना जना तो रेडियो के दीवाना लोग बाड़े नहीं रेडियो जरूर सुनले बिना उस सबके नहीं रह जाला। तो रेडियो प्रति आप सबके माया जब इतना बाटे तो फोनवा कहे नहीं आवला प्रश्न यहाँ हमारे बाटे वही के मारे अनुरोध रहे कि फोन कह दिया जाए आप सब भी। हेलो नमस्कार। नमस्कार जयराम जी के महेंद्र जी एक बात पूछे मन कही दल बिहान तीज हो बाबा बर्द गोरिया में आज उद्घाटन कार्यक्रम बाटे आज भी पूजा पाठ होत बाटे बिहान धूमधाम के साथ होइबे करी तो हमन के बड़का अतवार तीज बात के जोन अगला अतवार आवेला उहे बड़का अतवार हो वह तो हम थोड़े कन्फ्यूज हो गई का कहीं हमारे लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य बाण आज प्रेस विज्ञप्ति निकाल के बड़का अतवार के शुभकामना दिले बाण का तो हम कहीं अगर तीज बाद के अगर बड़का अतवार होके अतवार तो इतना जल्दी से कहें शुभकामना कहें कि अभी तो तीजे ना खत्म भइल बाटे पहले तो तीज के शुभकामना देख पड़ल न तो अब हमके उन्ना जानकारी नहीं भइल नहीं कहें कि अब बड़का अतवार अगर आज हो तो खैर ठीक बा सबके शुभकामना संदेश तो प्रवाह करे परी नहीं अगला वाला हो सकेला नहीं तो मुख्यमंत्री कन्फ्यूज हो गए ना का बुझाता ल ठीक बा बड़े बड़े आदमी लोगन ढेर पहलहूँ भी शुभकामना संदेश परवाह कही सकल कहे कि हमन के ऐसा बुझे परी नहीं गलत ना लिख भैलो कि और अब तीज हमन के आ गए बाट खास है कि हमन के बड़का अतवार में कौन कौन सी काम धाम होला उम्र के हिसाब से महेंद्र जी हमन के अब थोड़ा एक अग्रज आदमी भी बाड़ी जाने खास कि बड़का अतवार में हमन के कौन सी कही जाला ल आपके अबजी हम तो नहीं बुझली रेडियो सुने वाला श्रोता में दोगन किजन कितना बुझल अबजी अब उतना बढ़िया से नहीं आई अगर कहीं उखल जाए तो बरू घर के भीतर उखल जाए तो बाहर ही निकल जाए जी कहें कि गनवा गावती दें थोड़ा अच्छा सुनाई तो और बढ़िया हो महेंद्र जी आपकी आवाज ये थोड़ा क्लियर ना आवत का, स्पष्ट ना आवत है। हाँ अभिनवा ठीक आयल बाटे, कहे कि तभिनवा बड़का त्यौहार के बारे में बोलल गई नहीं। अब ठीक है, बड़का त्यौहार हो तर त्यौहार एठो हो कह के हमन के मानल जाए नहीं, समय भी एकदम कम बा, तो खास है कि बड़का त्यौहार के बारे में का कहल गई अपने। अच्छा चल जा ठीक बाटे, एकदम जानकारी के लिए धन्यवाद बाटे। छोट मीठो गाना गुनगुना दिया जाए, समय ज्यादा नहीं वाला।

ल ठिक बाट एकदम समय ख्याल कहिके एकदम छोट मिठ गाना गुनगुनाओल गेल ओकर लिए एकदम विशेष के धन्यवाद यह छुटा जा कार्यक्रम से। महेन्द्र चौधरी जी रहने हमन के दंगिया से फोन कैले रहना यहाँ के भी विशेष के धन्यवाद बाटे। अब फोन न कह दिया जाए कहें कि समय एकदम अंतिम अंतिम में रह चुका बाड़ी जाना वही के मारे हम एक बेर नाम लिखे के चाहत बाड़ी कार्यक्रम में सात जनी फोन कैले। शुरू में फोन आए लाल प्रमोद परिहार जी के बंजरिया से फोन कैले रहना गीत गुनगुना के प्रयास कैले ओकर लिए प्रमोद जी के धन्यवाद बाटे। आए वाला दिन में प्रमोद जी के फोन जरूर आए कि एकदम विश्वास बा। तीरथराज चौधरी अहिरौली से फोन कैले। बलराम प्रसाद दास जी हमन के परसा से फोन कैले रहना उतना लंबे रह के हमन के परसा 12 वर्ष आदमी लोग फोन के जो साथ देता है उ लोगन के भी एकदम ढेर से ढेर धन्यवाद बाटे। रामनाथ हरिजन बहुत पुरान संगरिया होलें एकदम गीत संगीत के दुनिया में बहुत मस्त आवाज़ बाटे। वैसे हमन के हर्षमान जी के आवाज़ के भी हमन के बातचीत का कल जाना है हर्षमान जी भी बहुत बढ़िया गाना गावन है। शमसुद्दीन अंसारी जी पहले फोन कैले बातचीत करत करत फोन कहें कट गेल बीच में नहीं लेकिन फिर से जुटे के अवसर मिला जाना उनके भी धन्यवाद बाटे। और हमन के महेंद्र चौधरी दंगिया से फोन कैले। महेंद्र जी के भी फोन बहुत दिन से आवत बाटे काफ़ी दिन से रेडियो सुन के साथ देने इस सबके एकदम विशेष करके धन्यवाद बाटे। हमन के अगला हफ्ता एतवार के दिन हमन के स्टूडियो में रह के हमन के हर्षमान जी से हमन के बातचीत कैले। हर्षमान जी के आवाज़ में खूब बढ़िया बढ़िया गाना सुनल जाए कहें कि गीत संगीत के दुनिया में गीत संगीत के आवाज़ में हर्षमान जी की आवाज़ इतना मिठास आवाज़ बा इतना बढ़िया तरीके से गीत गावल है इनकर साथ में रह के हमन के बातचीत करल जाए। प्राविधिक में रह के साथ देना शंभू चौधरी जी के धन्यवाद दिए। सुरेश यादव विदा होत बाड़ी नमस्ते।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।

0: नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि रु 1,00,000 को दुर्घटना बीमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 078-520-124 र 98-472-99-011 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
1: म सानै उमेरमा बेचिए, बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाँचेर। तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ। यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र? खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
2: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे। झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति। जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु दिदी।
3: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
4: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5,00,000 जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
3: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
5: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
6: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज।
5: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य, आवर डटर्स इन्टरनेशनल।
7: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए चाहिए।
8: सही कहला हो, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
9: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कर जा सफेद सरफ। जवन ठूठी बारी बरगदमा लगाए गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
7: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कैले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
8: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।

0: छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: सुनत बाडा हो, हाय टेढ़मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
4: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
5: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
6: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1,000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए बात 1,200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
3: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559745486।
7: नमस्कार, म लोकदोरी गायिका।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले अपराह्नको एक बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता ईसा साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
0: इतने भरना ही सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
2: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी, घंटा घर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 9861745737।
3: जो कोई को इच्छा सुंदर घर को लागी सुंदर रंग
4: तपाईको घरलाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इन्डिगो पेंट्स।
3: इन्डिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी।
4: इन्डिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रङ रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
3: इन्डिगो पेन्ट्स सदा बसन्तम।
5: घरलाई कस्तो रङ सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
3: त्यति मात्रै कहाँ हो र, हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान, सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
4: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
3: परासीमा घर रङरोगन प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने एकमात्र स्थान
6: सत्य भगवती ट्रेनिङ कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
5: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी, सम्पर्क 0785207747 र 9857046747।
7: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
8: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी कि नवे छावे के, लेकिन
7: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
9: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
10: संपर्क खातिर
9: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने। प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 9874768730 और 9914960630।
11: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
12: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
13: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 देखि 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे सम्बन्धी हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ। साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
11: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्धचोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0 78 590 699 र मोबाइल 98 577 47 282।
10: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98 570 23 031।
14: नमस्ते म नरहरी प्रेमी, मेरो रेडियो तपाईँको रेडियो अनि हामी सबैको रेडियो, रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो?
1: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
0: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
2: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कईल जाला।
3: संपर्क खातिर
2: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 9834768730 और 9814660630।
4: सुनत बाड़ा हो, है टेढ़ मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
5: है देखा, अब लाज कौन बात की हो? चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
6: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
7: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निशुल्क इलाज।
4: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559574700 और 9559544836।
8: के तपाई अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
2: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
8: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पुरा गर्दैछौ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटीएस, पीटीई र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु।
2: थप जानकारी का लागि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, रामग्राम 5 परासी अदालत को ठीक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 9510038135।
9: ओ माई गॉड, इत अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगातार फिर पड़क गई।
10: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
4: जी, हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, एमआरएफ, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
11: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठूठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918-5109-81।
8: ल, बिहेको अरु तयारी त भयो, अब गर गहना।
4: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है
2: बाबा। बाबा, गहना त ढकाल ज्वेलर्स भूमिबाटै बनाउनु पर्छ है। अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको, कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
8: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्षिण कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचाँदीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्। साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
2: सुनचारी का गरगहना का लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स सुनोल बारा भुमही प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल सम्पर्क 98677 80632 98075792111 र 98495171979।
3: अब इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोरूम परासीमै
8: तपाई हाम्रै सुन्दर नगरी परासीमा वातावरण मैत्री दुई पाङ्रे इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोरूम खुलेको छ। स्कूटर खरीद गरी अब पेट्रोल भर्ने र सर्विसिङ गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस्।
3: साथै एक पटक चार्ज गरेपछि 100 किलोमिटर सम्म मजाले चढ्नुहोस्, त्यो पनि 70 किलोमिटर प्रति घण्टा सम्मको स्पिडमा।
8: अब जानकारी का लागि गीता अटोमोबाइल ग्राम ग्राम 5 बाईपास रोड हाट बजार नजिक परासी। सम्पर्क मोबाइल 98570046865 र 98069558118।
3: अब दायाँ बायाँ हैन, इलेक्ट्रिक स्कूटर नै रोजौं।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई, बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45 860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।

0: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनोवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 078-520-881।
1: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 078-590-588।
2: नमस्ते, म नरहरि प्रेमी। मेरो रेडियो तपाईँको रेडियो अनि हामी सबैको रेडियो, रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: मैया ए मैया
1: हजुर के भो
0: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
2: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
3: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
4: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर निसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
3: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9803313151
5: हेलो हेमलक ट्राभल्स हो
1: हो हजुर
5: सुन्नु न एउटा दुबईको प्लेन टिकट चाहिएको थियो अनि भैरवा टु काठमाडौँको लागि दुईवटा टिकट पनि
1: भइहाल्छ
6: हजुर हेमलक इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स भुमैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट अनलाइन श्रम स्वीकृति टिकट कन्फर्म टुर प्याकेज होटल बुकिङ भिजा सर्भिस अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै स्कर्पियो जीप कार भाडामा चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्
1: सुन्नुहोस् त टिकटको मिति सार्नु परेमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस् हेमलक इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स सुनोल 12 भुमई म्यानेजिङ डाइरेक्टर भोला पराजुली फोन नम्बर 078415001 र मोबाइल 9857045546
6: हेमलक तपाईँको यात्राको विश्वासिलो सारथी
1: ए बुढा एउटा राम्रो नयाँ डिजाइनको गहना बनाउन मन लागेको थियो जाऊ न गुलमेली सुनचादी पसल भूमैमा
7: ए जीएस गुलमेलीमा भइहाल्छ नि यस क्षेत्रमै दशकौ पुरानो भर पर्दो र सबैको रोजाइको पसल हो नि अनि फेरि सुन जस्तो कुरा जहाँ पा त्यही कहाँ किन्नु हाम्रो विश्वास त जीएस गुलमेली नै हो
1: हजुर हामी कहाँ शुद्ध सुनबाट निर्मित आकर्षक डिजाइनका तयारी तथा अर्डर अनुसारको गरगहना पाउनुका साथै राशि अनुसारका पत्थर जडान गरिन्छ
6: नयाँ पुरानो सुनचारी खरिद बिक्री वा सत्ता पत्ताका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस् जेएस गुलमेली सुनचाँदी पसल सुनवल 12 भुमही प्रोप्राइटर धनबहादुर सुनार फोन 078415047 मोबाइल 9857036358 र 9006677763
8: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्
9: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार
10: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नशा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ
11: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे ओपिडी सेवा सुजर प्लास्टर फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ
8: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्धचोक परासी संचालक शुभम यादव फोन 078-590-6199 र मोबाइल 9857047282
12: ओ माई गॉड ई तो अभी वह दिनवा बदलल का टायरवा है लगातार फिर पड़क गई
13: ए भैया चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा
14: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन MRF सीएट मैक्सिस टीवीएस रालको डनलप जेके गुड ईयर लगाए के टायर ट्यूब रिम स्टील वार्ड पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला
8: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस मेन रोड ठुठीवारी प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त व्हाट्सएप नंबर 9118-5109-81।
15: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो?
16: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी किनवे छावे के लेकिन
15: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला एक बार जाके तो देखी।
17: जी हाँ पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
18: संपर्क खातिर
17: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान मोबाइल 9843-68733 और 9814-6630।

0: मैया ए मैया
1: हजुर के भो
0: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
2: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
3: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने
4: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर नेसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
3: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 98023131
5: हेलो हेमलक ट्राभल्स हो
1: हो हजुर
5: सुन्नु न एउटा दुबईको प्लेन टिकट चाहिएको थियो अनि भैरवा टु काठमाडौँको लागि दुईवटा टिकट पनि
1: भइहाल्छ
6: हजुर हेमलक इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स भुमैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट अनलाइन श्रम स्वीकृति टिकट कन्फर्म टुर प्याकेज होटल बुकिङ भिजा सर्भिस अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै स्कर्पियो जीप कार भाडामा चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्
1: सुन्नुहोस् त टिकटको मिति सार्नु परेमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस् हेमलक इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स सुनोल बार भुमई म्यानेजिङ डाइरेक्टर भोला पराजुली फोन नम्बर 078-415-001 र मोबाइल 98-570-45-546
6: हेमलक तपाईँको यात्राको विश्वासिलो सारथी
1: ए बुढा एउटा राम्रो नयाँ डिजाइनको गहना बनाउन मन लागेको थियो जाऊ न गुलमेली सुनचादी पसल भूमैमा
7: ए जीएस गुलमेलीमा भइहाल्छ नि यस क्षेत्रमै दशकौ पुरानो भर पर्दो र सबैको रोजाइको पसल हो नि अनि फेरि सुन जस्तो कुरा जहाँ पाए त्यही कहाँ किन्नु हाम्रो विश्वास त जीएस गुलमेली नै हो
1: हजुर हामी कहाँ शुद्ध सुनबाट निर्मित आकर्षक डिजाइनका तयारी तथा अर्डर अनुसारको गरगहना पाउनुका साथै राशि अनुसारका पत्थर जडान गरिन्छ
6: नयाँ पुरानो सुनचादी खरिद बिक्री वा सत्ता पत्ताका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस् जेएस गुलमेली सुनचादी पसल सुनवल 12 भुमही प्रोप्राइटर धनबहादुर सुनार फोन 078-415-047 मोबाइल 98-570-36-358 र 98-066-87-763
8: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्
9: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाड जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार
10: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ
11: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे ओपिडी सेवा सुजर प्लास्टर फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ
8: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्धचोक परासी संचालक शुभम यादव फोन 078-595-699 र मोबाइल 98-570-47-282
12: ओ माई गॉड इते अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है लगातार फिर पड़क गई
13: ए भैया चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा
14: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन MRF CET मैक्सिस TVS रालको डनलप JK गुड ईयर लगाए के टायर ट्यूब रिम स्टील वार्ड पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला
8: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस मेन रोड ठुठीवारी प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त व्हाट्सएप नंबर 9918510981।
15: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो?
16: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी कि नवे छावे के लेकिन
15: का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला एक बार जाके तो देखी।
17: जी हाँ पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
18: संपर्क खातिर
17: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान मोबाइल 9834 68730 और 9814966630।

0: अब तपाईँको टोयलेट जाम भयो वा भरियो भनेर तपाईँ भौतारिनु पर्दैन। मात्र एक कल फोन राम बच्चन सेनेटरीलाई गर्नुभयो भने हामी तुरन्त आइहाल्छौँ।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: अत्याधुनिक भ्याकुम क्लिनर मेसिन द्वारा गन्ध रहित तरिकाले सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिने,
1: विद्युत नभएमा पनि जेनेरेटरबाट काम गरिने।
2: थप जानकारीका लागि सम्पर्क राम बच्चन सेनेटरी रामग्राम एक परासी।
3: सम्पर्क मोबाइल 98069707482, 98007075 र 98674 95513।
4: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
5: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव, हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी, हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण, हरेक शनिबार
6: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी, हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा, हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन, हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे, हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
7: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
4: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, सञ्चालक शुभम यादव, फोन 0785906999 र मोबाइल 98570447282।
8: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी,
9: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजिंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, USG ECG तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
8: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
10: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 98671475737।
11: जो कोई को इच्छा सुंदर घर को लागी सुंदर रंग,
12: तपाई को घर लाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इंडिगो पेंट्स।
11: इंडिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कंसर्न कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग रामग्राम 3 परासी।
12: इंडिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रंग रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
11: इंडिगो पेंट्स सदा बसन्तम।
13: घरलाई कस्तो रंग सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
7: त्यति मात्रै कहाँ हो र, हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान, सूर्या ब्रान्डको 7 रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
12: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
7: परासीमा घर रंगरोगन प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्य पाइने एकमात्र स्थान
12: सत्य भगवती ट्रेनिंग कंसर्न कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग रामग्राम 3 परासी पुरानो फिल्म हल को अगाड़ी।
13: प्रोप्राइटर चंद्रमणि चौधरी, संपर्क 0785207747 र 98570046747।
14: अंकल नमस्कार, बहनी ब्याह कर द्वारा का?
15: हाँ बेटी, बिटिया सियान हो गई, अब समय में ब्याह हो जाते।
14: नहीं अंकल, पहले जैसा समय अब नहीं रह गई, अब ते 20 वर्ष ने पुग के ब्याह करे के और कराए के नहीं मिले। कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे के पड़ी, और उतना भर नहीं, छोटहन उम्र में ब्याह कर दे के बहनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हुई।
15: ऐसा बात बाटे?
5: हाँ, हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल।
10: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिवाना होखेला। यह नाते अगर ऐसा गतिविधि होई तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रेणी सामाजिक विकास मंच, UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: भोजपुरी हाल खबर,
2: भोजपुरी हाल खबर,
1: अपने गांव घर और आसपास की ताजा घटना की जानकारी के खातिर हर रोज जरूर सुनल जा।
2: भोजपुरी हाल खबर
1: मात्र रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज पे।

नमस्कार, पश्चिम नवलपरासीकै पहिला रेडियो स्टेसन सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 MHz इन्टरनेट अनलाइन के www.radioparasi.com मार्फत एकैसाथ प्रसारण हो रहल साँझी के 5 बजे के भोजपुरी हाल खबर में हम सुरेश यादव के तरफ से आपके स्वागत बा। हाल खबर शुरू कइल जा खास खास खबर से। सुनवल से नेपाल भारत सीमा जोड़े वाला प्रसारण लाइन निर्माण के काम हो रहा। 18 किलोमीटर में 53 टावर निर्माण, जगह प्राप्ति में 1,24 करोड़ मुआवजा वितरण। भोटेकोशी बाढ़ी हिम माटी कटान के कारण आयल तथ्य सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक। भोटेकोशी प्रभावित परिवार लोगों के मासिक 15,000 आवास भाड़ा उपलब्ध कराए वाला मंत्री परिषद के निर्णय। कपिलवस्तु के बाणगंगा नदी में आयल बाढ़ी में बेपत्ता भइल बालक मृत अवस्था में मिलल। नदी किनार के बस्ती के जोखिम न्यूनीकरण करे खातिर बुटवल उप महानगर जोखिम युक्त क्षेत्र पहचान करे वाला। और इंडोनेशिया में 240 जना यात्रु सवार पानी जहाज संपर्क विहीन, खोजी के काम चल रहा। ACC प्रीमियम कप विजेता नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आज राति स्वदेश वापस आए वाला। अब सुनल जा पूरा हाल खबर। पश्चिम नवलपरासी के सुनवल नगरपालिका वार्ड नंबर 13 सूर्य बस्ती स्थित न्यू बुटवल सब स्टेशन में आज एक कार्यक्रम के आयोजन कई के नेपाल भारत सीमा के साथ जोड़े वाला प्रसारण लाइन के निर्माण के काम संपन्न भइल बा। 400 KV न्यू बुटवल सब स्टेशन से 18 किलोमीटर के दूरी में प्रसारण लाइन निर्माण के काम हो रहा बाट। सब स्टेशन से लेके भारत के सीमा के साथ जोड़े वाला 18 किलोमीटर में जम्मा 53 टावर निर्माण भइल। मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल विकास समिति MCA नेपाल जनौले बाटे। MCA नेपाल के कार्यकारी निर्देशक खड़क बहादुर विष्ट शिलान्यास भइल 9 महीना में ही प्रसारण लाइन के निर्माण के काम हो रहा जानकारी दिले बने। कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय के सचिव डॉक्टर घनश्याम उपाध्याय नेपाल अमेरिका और MCC बीच के साझेदारी से नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में नया संभावना उजागर कइल बतौले बने। उहाँ अनुदान सहायता समझौता पश्चात पहिला सम्पन्न परियोजना भइल बताउले भने डाक्टर उपाध्याय यी परियोजना से नेपाल भारत बीच के विद्युत आयात निर्यात में लाइफ लाइन के काम करे वाला बताउले भने। ऐसे कार्यक्रम में MCC आवासीय राष्ट्रीय नियोग के निर्देशक डायन फ्रांसिस्को, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सहसचिव सुनील पौडेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ लगायत बोलले रहने। प्रसारण लाइन निर्माण के लिए हाल तक ई क्षेत्र के 1,375 जना मुआवजा बापत के रकम पौले बने। करीब 1,24 करोड़ रुपया मुआवजा वितरण भइल बाटे, जेमे तार तरे के जगह बापत करीब 95 करोड़ और टावर रहल जगह में करीब 29 करोड़ रुपया भुगतानी भइल बाटे। अन्य निर्माण काम संपन्न होके हस्तांतरण होके खातिर अभिन 29 महीना बाकी रहल। MCA नेपाल जनौले बाट फील्ड बुक में नाम भइल, लेकिन लाल पूर्जा में नाम भइल करीब 145 जना के जगह के मुआवजा वितरण अभिन्न प्रक्रिया में ही रहल बाटे। भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड काम के ठेका पौले रहल। ई प्रसारण लाइन नेपाल के विद्युत प्रसारण प्रणाली के थप सुदृढ़ बनावत, भारत साथ के विद्युत व्यापार तथा विद्युत आपूर्ति प्रणाली के सहज बनाए खातिर महत्वपूर्ण योगदान पुगे वाला अपेक्षा लिहल गेल बाटे। MCC अनुदान अंतर्गत नेपाल में 3 सब स्टेशन, 315 किलोमीटर प्रसारण लाइन और सड़क सुधार के अन्य काम द्रुत गति में हो रहा बा। सरकार भादो 10 गते भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आयल बाढ़ी के कारण न हो कि माथिलो हिम क्षेत्र में हिं और चट्टान गिर के आयल तथ्य सार्वजनिक भइल बाटे। जल तथा ऊर्जा आयोग अंतर्गत के जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केन्द्र सार्वजनिक के प्रतिवेदन अनुसार माथिलो लेहेंदे नदी क्षेत्र में गैल आइस रॉक एवलांस अर्थात हिम माटी कटान के कारण बाढ़ आयल रहल। भयानक हिम माटी कटान गिरत के दाइन 5.2 मैग्नीच्यूड बराबर के भूकंपीय ऊर्जा समेत रिकॉर्ड भइल बाटे। प्रतिवेदन के अनुसार ई बाढ़ी रसुआगढ़ी तक प्रति घंटा 88 किलोमीटर के अल्प अकल्पनीय और तीव्र गति में आयल रहल। तीव्र वेग के बाढ़ी से पूर्व सूचना के खातिर समय में ही न देखी
समय नदेखे किनार मेलहर रसुवागढी स्याफ्रुबेसी बेत्रावती और मैलेखुके महत्वपूर्ण जलमापन केन्द्रके धवाके पूर्ण रूपमे नष्ट कैले रहल। यद्यपि छोट समय भैले पर भी रसुवा नुवाकोट धादिङ गोर्खा नवलप्रासी और चितवनके प्रभावित क्षेत्रमे 6,78,000 से ज्यादा SMS पठाके स्थानीय लोगनके सचेत कराए खातिर सफल भइल प्रतिवेदनमे कहल गेल बाटे। बाढी के बाद पछिल्ला लेहेन्दे नदी क्षेत्र में दुई ठो नया अस्थायी ताल बनल बाटे। यी ताल फुटे सके वाला जोखिम रहले से तरे वाला तटीय क्षेत्र में अफीन खतरा कायम रहल प्रतिवेदन देखौले बाटे। संभावित जोखिम के मद्देनजर करत भविष्य में तत्काल पूर्व सूचना दिए खातिर रसुवा के टिमुरे में नेपाल में पहिला बेर CCTV मार्फत रियल टाइम नदी अनुगमन प्रणाली जडान भइल बाटे। ये बीच भोटे कोशी बाढी प्रभावित नागरिक लोगन के मासिक 15,000 रुपया उपलब्ध होके वाला बाटे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री विक्रम तिमिल सिन्हा के अनुसार गैल का विभैया के बैठक मंत्री परिषद की बैठक भोटे कोशी बाढी प्रभावित 4 सदस्य तक के परिवार लोगन के थाई आवास निर्माण नाई भैले तक के खातिर आवास भाड़ा बाबत मासिक 15,000 रुपया उपलब्ध होके वाला बाटे। ओकर पश्चात थप प्रत्येक सदस्य के खातिर 2,000 अतिरिक्त उपलब्ध कराए वाला निर्णय भइल बाटे। अगर कोनो परिवार ये सुविधा लिहे नाई चाही सरकार थाई आवास निर्माण नाई भइले तक अस्थायी आवास के व्यवस्था करे वाला विकल्प भी उपलब्ध कराए वाला वहाँ के कहना बाटे। आवश्यक विवरण संकलन के खातिर सब संबंधित स्थानीय तह में फार्म पठावल गेल। तिमिल सिन्हा के कहना बाटे वहाँ सरकार प्रारंभिक क्षति तथा नुकसानी मूल्यांकन सम्पन्न कैले बाटे और विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन प्रक्रिया जारी बाटे जेकर आधार में आवश्यक स्रोत सुनिश्चित कैके पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना काम के तीव्रता के साथ आगे बढ़ाए वाला बाटे। रसुआ नुवाकोट और बाढ़ी से प्रभावित सब क्षेत्र में नागरिक लोगों के सुरक्षित पुनर्स्थापना पूर्वाधार पुनर्निर्माण और जन जीवन यापन के पुनः स्थापना प्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहल। तिमिल सिन्हा बताओले भने ऐसा कि रसुआ स्थित भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़ी से प्रभावित नागरिक लोगों के राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापना के लिए नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण संस्थागत रूप में 15 करोड़ रुपया सहयोग कैले बा। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक IGP दान बहादुर कार्की काठमांडू के ट्राफिक व्यवस्थापन के प्रविधि मैत्री बनाए खातिर AI सक्षम CCTV लगात के प्रविधि के प्रयोग बढ़ाए के परी में जोर दिए बने। ट्रैफिक प्रहरी के गाड़ी के बीच में जोखिम सही के ठड़िया के हाथ हिलावत ट्रैफिक व्यवस्थापन करल अवस्था के अंत्य करत वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रणाली विकास करे के परी वहाँ के कहना बाटे। 8 काठमांडू महानगर प्रहरी बल के 3400 वार्षिक उत्सव में AIG कार्की बस रुके वाला जगह बस पार्क पार्किंग और समग्र ट्राफिक व्यवस्थापन के व्यवस्थित बनाए के परिमे जोर दिए बने। साथ ही काठमांडू महानगरपालिका साथ के सहकारी के फुटपाथ व्यवस्थापन पार्किंग व्यवस्थापन और अल्पकालीन उद्धार प्रणाली के थप प्रभावकारी बनाए के परि वहाँ के कहना बाटे। कार्की नेपाल प्रहरी और पालिका बीच भौतिक संरचना निर्माण तथा सुरक्षा व्यवस्थापन में सहकार्य करल उल्लेखले बने। 7/53 पालिका के गृह मंत्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निवारण मंत्रालय और संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय मार्फत प्रहरी के साथ समन्वय करे खातिर पत्रचार हो रहा वहाँ के कहना बा। सरकार मलेशिया के विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली में आबद्ध नेपाली इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संस्था के ऊपर छानबीन तथा कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ौले बाटे। मलेशिया रोजगारी में सिंडिकेट करे के लगाओल गेल आशंका में वैदेशिक रोजगार विभाग उक्त प्रणाली में मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था के रूप में सूचीकृत करे खातिर 25 इजाजत पत्र प्राप्त संस्था के प्रणाली साथ के आबद्धता निरंतरता न्याय दिए खातिर निर्देशन दिए बाटे। साथ ही आबद्ध संस्था अपने प्रणाली से बाहरी निकरल तथ्यगत जानकारी प्रमाण सहित पेश करेगी तथा नया रूप में आबद्ध नाई होके के निर्देशन दिए बाटे। ऊ संस्था के सहयोगी संस्था के रूप में सूचीकृत भइल कहल गेल। 250 संस्था के मलेशिया संबंधी नया पूर्व स्वीकृति प्रक्रिया भी तत्काल के खातिर रोका कैल गेल बाटे। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के निर्देशन तथा 2083 भादो 26 गति के मंत्री स्तरीय निर्णय अनुसार विभाग पछिल्ला कदम आगे बढ़ौले बाटे। इससे पहले मलेशिया नेपाल के 25 मेन पावर कंपनी मार्फत भर श्रमिक ले जाए वाला कहत सूचीकृत कैले रहल। ऊ सिंडिकेट भइल कहत व्यवसायी लोगन विरोध करत आयल रहलें। मंत्रालय मलेशिया साथ के श्रम आप्रवासन संबंधी विषय के दुई देश बीच सरकार संवाद मार्फत समाधान करे खातिर प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल हो रहा जनौले बा। पश्चिम नवलप्रासी के 7 स्थानीय तह में से 5 स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोगन के सरुआ भइल बाटे। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय भादो 26 गते निर्णय कैके ऊ लोगन के सरुआ कैले बाटे। 5 जना में से 3 जना के स्थानीय तह में ही और 2 जना के अन्य
निकायमा स्वर्ग भइलबाट रामग्राम नगरपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेकै राष्ट्रिय योजना आयोगकै सचिवालयमा स्वर्ग भइलबाट उहाँकै जग्गामै कृष्णनगर नगरपालिका चाहिँ खेमराज देवकोटाकै खटावल भइलबाट वार सुनवल नगरपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी शेषकान्त पौडेलकै गृह मन्त्रालयमा स्वर्ग भइलबाट उहाँकै जग्गामै राष्ट्रिय योजना आयोगकै सचिवालय से दुर्गा बन्जाडेकै खटावल गेलबाट यसै बर्दघाट नगरपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलकै तिलोतमा नगरपालिका रूपन्देहीमा स्वर्ग भइलबाट उहाँकै जग्गामै निर्वाचन आयोग से ऋषिराम भूषालकै खटावल गेलबाट ऐसेकै के प्रतापपुर गाउँपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता विगत थारूकै गैंडाहावा गाउँपालिका रूपन्देहीमा स्वर्ग भइलबाट उहाँकै जग्गामै कारागार कार्यालय से सुभाष शर्मा पौडेल आयवाला बाणा सुस्ता गाउँपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम लाल भूषालकी ओम सतीय गाउँपालिका रूपन्देहीमा स्वर्ग भइलबाट उनकर जग्गामै अध्यागमन विभाग से अर्जुन प्रसाद रेग्मीकै खटावल गइलबा। कपिल वस्तुकै बाढगङ्गा नदीमा आयल बाढीमा बेपत्ता भइल 10 वर्षीय बालक बुद्ध लामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमै मृत अवस्थामा मिलल बाणा। उनकर सब भारतकै बगुलहमा नदीमा मिलल बाटे बाढगङ्गा नगरपालिका 8 निवासी लामाकै सब नेपाल भारत सीमासे करिब 2 किलोमिटर लम्बे भारतीय क्षेत्रमै आज दुपहर मिलल प्रहरी जनाउले बाटे। शनिचरवाके बाढगङ्गा नगरपालिका 4 मायादेवी रङ्गशालाकै पूर्वतर्फ करिब 1 किलोमिटर दक्षिणमा रहल नदीमा पौडी खेले खातिर गइल बुद्धसहित 2 जना बालक नदीकै बहाव बढलेकै बाद बीचमे जाके दहल रहन घटनाकै जानकारी पौलेकै बाद इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तु तथा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस पिपरासे खटल गइल संयुक्त टोली उद्धार काममे खटल रहल टोली रबर बोटकै प्रयोग कैके 16 वर्षीय रिदम लामाकै सकुशल उद्धार कैले रहल लेकिन लामाकै तत्काल बरामद गरे नाइ सकलेकै बाद प्रहरी खोजी कामकै तीव्र बनाउले रहल। खोजी गरेवाला क्रममे उनकर सब मिलल प्रहरी नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमार सिंह जानकारी दिएले भने मिलल सब भारतीय प्रहरीकै समन्वयमे सोहर गण प्रहरी चौकीमा रखल गइलबाट आवश्यक कानुनी तथा द्विपक्षीय समन्वयकै बाद सब नेपाल ल्याएवाला तयारी हो रहल प्रहरी जनाउले बाट यहार नदीकै किनारमै बसोबास गरेवाला बस्तीकै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरे खातिर बुटवल उपमहानगरपालिका वडा तहसेही जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरे खातिर तयारी सुरु कैलेबाट बरसातकै समयमै तिनाउ नदीकै बहाव बढतकै दायन नदी किनारकै बस्तीमै बाढी हो डुबानकै जोखिम बढत गइलबाट भोटेकोशी बाढीसे भइल बडा जनधनकै क्षति से जोखिमयुक्त बस्तीकै अवस्था समयमै पहिचान गरिकै आवश्यक पूर्व तयारी गरेकै परि आवश्यकता थप स्पष्ट भइल उपमहानगर पालिकाकी बुझाइबाट यहीकै ध्यानमै रखत उपमहानगर वडा तहसेही प्राविधिक टोली परिचालन गरिकै तिनाउ नदीहरू आसपासकै बस्तीकै स्थलगत अध्ययन गरेवाला योजना बनाउनेबाट टोली नदीकै बहाव बस्तीकै अवस्थिति भौगोलिक अवस्था तथा विगतमै लोकल जोखिमकै आधारमै सम्भावित जोखिम क्षेत्रकै मूल्याङ्कन गरेवाला बा। टोलमे राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाकै तयारी सुरु कैल गेलबाट स्वाधीन अर्थतन्त्रकै लिए राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा व्यापार विविधीकरण मूल नारासहित उद्योग व्यापार संघ बुटवल राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार एवं कृषि तथा पर्यटन महोत्सवकै तयारी सुरु कैलेबाट आगामी पुस 3 से 16 गते तक सञ्चालन होकेवाला बुटवल मण्डप स्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमे उक्त मेला सञ्चालन होकेवाला किसिमसे औपचारिक रूपमे तयारी सुरु कैल आयोजक जनाउनेबाट मेला तयारी अन्तर्गत शनिचरवाके प्रदर्शनी स्थल आगे मेलाके साइन बोर्ड और लोगो सार्वजनिक के साथ एकर खातिर गठित 29 ठो उपसमिति संयोजक के नामावली सार्वजनिक भइलबाट मेला आयोजक संघ के अध्यक्ष लेखनाथ पन्थी मेला स्थल व्यवस्थापन स्टल तथा पेभेलियन निर्माण स्टल धनी व्यवसायी लोगनके सहभागिता सुरक्षा सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम लगायतकै तयारीकै आगे बढाओल गइलबाट स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाके प्रदर्शनी और बिक्रीकै प्राथमिकता दिएल गइल मेला औद्योगिक विकास उद्यमशीलता प्रवर्धन स्वदेशी उत्पादनके बजारीकरण और आर्थिक गतिविधि विस्तार गरे खातिर सहयोग पुगेवाला लक्ष्य लिहल अध्यक्ष पन्थी बताउले भने यसैगरी आयातकै निरुत्साहित गर निर्यात प्रवर्धन गरेको नेपाली उत्पादनकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार तक पुगाए खातिर सहयोग गरेवाला उद्देश्य समेत मेला लिहल अध्यक्ष पन्थी बताउले भने मेलामै उपभोक्ता लोगनकै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ रूपमै उपलब्ध गराइलेकै साथै उद्योग कृषि पर्यटन तथा
लगानी प्रवर्धन के साथ संबंधित तमाम सेमिनार गोष्ठी और अंतरक्रिया कार्यक्रम संचालन होके वाला बा। स्वदेश तथा विदेश के उद्योगी व्यवसायी कृषक लगानीकर्ता तथा उपभोक्ता लोगों के सहभागिता से स्थानीय तथा राष्ट्रीय अर्थतंत्र सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान पुगे वाला विश्वास आयोजक लिहले बाट मेला के व्यवस्थित रूप में सम्पन्न करे खातिर 29 उपसमिति गठन कई के तैयारी के साथ काम के आगे बढ़ावल गई। अध्यक्ष पंथी जानकारी दिले भने मेला में 450 से लेके 500 स्टल रहे वाला संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं स्टल दर्ता उपसमिति संयोजक पदम जीसी जानकारी दिले भने स्वदेशी उत्पादन स्थानीय और महिला उद्यमी के स्टल के प्राथमिकता दिए वाला मेला में हाल तक करीब 100 स्टल बुकिंग हो चुकल बा। अब सुनल जा अंतर्राष्ट्रीय खबर। इंडोनेशिया में 240 जना यात्रु सवार पानी जहाज संपर्क विहीन भइल बाटे। जावा सागर में पानी जहाज संपर्क विहीन भइल इंडोनेशियाली खोज तथा उद्धार अधिकारी लोग जनाले भने दक्षिण कालीमंतान प्रांत के खोज तथा उद्धार निकाय के अनुसार ई जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण कालीमंतान प्रांत के बांजार मासिन तरफ यात्रा करत रहल। यात्रा के क्रम में जहाज के साथ संपर्क टूटल बाटे। जहाज साथ के अंतिम संपर्क बंजारन मासिन खोज तथा उद्धार केंद्र से झंडे 80 समुद्री माइल लंबे रहल। संपर्क विहीन जहाज की खोज तथा उद्धार और अवस्था पत्ता लगाए के खातिर एक ठो उद्धार जहाज जोहार पठाओल गई बाटे। संपर्क टूटले से पहले यात्रुवाहक पानी जहाज समुद्री क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम के सामना करे के पड़ल। इंडोनेशियाली अधिकारी लोगों के उद्धृत करत चीनिया समाचार संस्था सिन्हा जनौले बा। अंतमेठो खेल प्रसंग। एसीसी प्रीमियम कप के उपाधि जीत दूसर वर्ष होके वाला एशिया कप में पुगल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आज राति स्वदेश वापस आ रहल बाटे। टोली मलेशियन एयरलाइंस से राति 10:15 त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आए वाला तालिका बाटे नेपाल कलियां भइल। एसीसी प्रीमियम कप के फाइनल खेल में यूएई के 44 रन से पराजित करत चैंपियन बनल बाटे। उपाधि के साथ नेपाल दूसरा बेर एशिया कप में पुगल बाटे। अब नेपाल दूसर वर्ष बंग्लादेश में होके वाला एशिया कप में आयोजक टोली के साथ भारत श्रीलंका पाकिस्तान

परिवार लोगन के मासिक 15,000 आवास भाड़ा उपलब्ध कराए वाला निर्णय। कपिल वस्तु के बाणगंगा नदी में आयल बाढ़ी में बेपत्ता भइल बालक मृत अवस्था में मिलल। नदी किनार के बस्ती के जोखिम न्यूनीकरण करे खातिर बुटवल उपमहानगर जोखिम युक्त क्षेत्र पहचान करे वाला। और इंडोनेशिया में 240 जना यात्रु सवार पानी जहाज संपर्क विहीन खोजी के काम चल रहा। एसीसी प्रीमियम कप विजेता नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आज राति स्वदेश वापस आ रहा। यही के साथ ही आज के भोजपुरी हाल खबर पूरा भइल। अपन गांव समाज के खबर के लिए सामुदायिक रेडियो परासी सुनत रहल जाई। सुरेश यादव विदा होत बाड़ी। नमस्कार।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी नया युग के समावेशी आवाज।
1: चाची रूमवा बहुत सफा बा हो और सुगंध भी बड़ा खुशबूदार आवता।
2: हाँ बाबू, महावीर इंटरप्राइज से टाइल क्लीनर आ रूम स्प्रे लगवैली है, बहुत बढ़िया बटलही बा।
3: जी हाँ, आप सब भी घर सफाई के खातिर वाइपर पोछा टाइल क्लीनर रूम स्प्रे हार्पिक हैंड वॉश टॉयलेट ब्रश कार्यक्रम भोज के खातिर सिल्वर पाउच नेपकिन पेपर गिलास प्लास्टिक के झोरा डाइनिंग टेबल कुर्सी स्टूल बाल्टी ऐसे गल्ला के काम करत के बोरा सीए वाला सुतरी सुज्जा परखी चोंगा पहले के साथ किचन संबंधी कुकर डेक्ची थरिया प्लेट गिलास लगात के सामान खातिर जरूर समझल जा।
4: संपर्क के खातिर महावीर इंटरप्राइजेस रामग्राम 5 परासी अग्रहरी पेट्रोल पंप के पूर्व साइड फोन 0785201 और मोबाइल 98575746766।
5: के भएको यस्तो नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
6: इसुमी, पहिला त मोबाइल कम चलाऊ, दोस्रो आँखा चेक गराइहाला क्या।
5: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
6: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
7: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरव आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
8: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
7: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 98119069017 र 98695434254।
8: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
6: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने।
5: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
6: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
7: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
8: सम्पर्क आर आर सेन्टर पोइन्ट रामराम 11 जमुआ

0: हुलास अटोक्राफ्टको ठिक अगाडि, मोबाइल 9857046130 र 9804400067।
1: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
2: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
1: चला, इतना बढ़िया सोच तोहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
3: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
4: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठीबारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 91242531।
5: नमस्कार, म लोकदोरी गायिका देव।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857548060।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।

0: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
1: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
2: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
3: ए बाबु, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
2: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ है पुराना और नया भी।
4: हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, इन नीड, indeed,
5: ekni,
4: far there, right here,
5: ekni wi-fi internet,
4: MPLS data connectivity, cable internet serves you always,
5: ekni,
4: with you always, everywhere,
5: contact 078-57-00-73.

0: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज।
1: नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि रु 1,00,000 दुर्घटना बिमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 078-520-124 र 98-472-1900 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
2: ए चाचा, देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गइल बा का हो? हमके तो एकदम धुधुराह लौकत है।
3: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा। आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गइल बाड़ी।
4: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा? अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
5: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मांस उभरल टेढ़-मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कईल जाला।
2: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 सुनोल रोड आँख अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 98-672-2815 और 98-570-2225।
1: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ। महासचिव भोला पराजुली, नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघ।
6: जता दौडिए पनि त्यस्तै, यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
2: लौ दाई पनि, सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
7: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
6: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
7: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 सुनोवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 078-520-881।
6: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 078-590-588।
7: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98-570-2301।
8: डाक्टर विनोद नेता कन्डेल, आँखा अस्पताल परासीको अनुरोध।
9: यस आँखा अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञद्वारा दैनिक आँखा चेक जाँच गरी मोतियाबिन्दु, मासु पलाएको, परेलाको समस्या आदिको नियमित शल्यक्रिया,
8: साथै मोतियाबिन्दुको अत्याधुनिक प्रविधि फेको मसिनबाट फोल्डेबल लेन्स राखेर शल्यक्रिया गरिँदै आएको र शल्यक्रिया पश्चातको जालो अत्याधुनिक याग मेसिन लेजर विधिबाट सफा गरिने सुविधा सहित चेक जाँच पनि भइरहेको छ।
9: हो, त्यसैले समयमै आँखा जाँच गरौँ र दृष्टि गुम्नबाट बचौँ।
8: अनुरोधक नेपाल नेत्र ज्योति संघ, डाक्टर विनोद नेता कन्डेल, आँखा अस्पताल परासी। फोन नम्बर 078-520-146 र 078-521-033।
4: अंकल नमस्कार, बहिनी ब्याह कर द्वारा का?
3: हाँ बेटी, बिटिया सियान हो गई, अब समय में ब्याह हो जाते।
4: नहीं अंकल, पहले जैसन समय अब नहीं रह गई। अब ते 20 ने पुग के ब्याह करे के और कराए के नहीं मिली। कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे की पड़ी और उतना भर नहीं। छोटा उम्र में ब्याह कर दे के बहिनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हो।
3: ऐसा बात बाटे?
10: हाँ, हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल।
2: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिमाना होखेला। यह नाते अगर ऐसन गतिविधि होई तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18-10-50-00-202 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रेणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।
3: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
11: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
3: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
12: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कैल जाला।
13: संपर्क खातिर
12: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 9834768730 और 9814960630।
14: मेरो प्रश्न चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई, माननीय मन्त्रीज्यू, सरकारले नीति बनाउँदा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा के सोच्नु भएको छ?
15: मेरो प्रश्न सांसदज्यूलाई, हजुर भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभयो, सुरुमा त बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ। अस्ति चुनावमा त तपाईँले धारा बत्ती बाटो बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, तर संसद त नीति बनाउने थलो हो नि सांसदज्यू। तपाईँले जनतालाई दिएको आश्वासन अब कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? अनि अब बन्ने नीतिमा चाहिँ म जस्ता युवाको सहभागिता कसरी गराउने सोच्नु भएको छ?
16: मेरो प्रश्न मेयर साहबलाई, अहिले स्थानीय सरकारले गर्ने काममा लैङ्गिक संवेदनशीलता र युवा सहभागिताको बारेमा कसरी सोच्नु भएको छ?
17: मेरो प्रश्न मन्त्री र सांसदज्यू दुवैजनालाई, अहिले सुशासनको सवालमा युवाको सहभागिता विषयमा कसरी सोच्नु भएको छ?
18: संघदेखि स्थानीय तहसम्म, नीतिदेखि विकाससम्म, विपद जोखिम न्यूनीकरणदेखि सुशासनसम्म युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे प्रश्न गरौँ। तपाईँको एउटा प्रश्नले नीति बदलिने र सुशासन कायम हुनेछ।
19: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।

0: आउनुहोस्, अब यस क्षेत्रकै हरेक किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक परासीमा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश ढकाल प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म छाती मुटु सुगर थाइरोइड तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन अग्रहरी प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म
2: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश घिमिरे प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म
3: लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमिल मिकरानी प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म
4: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण श्रीवास्तव प्रत्येक दिन 3 बजेपछि
3: र भैरहमा मेडिकल कलेजका नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्व तुलाचन प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म
5: साथै सम्पूर्ण प्याथोलोजी सेवा एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर तथा नर्मल अपरेसन र वैदेशिक रोजगारका लागि मेडिकल जाँच पनि गरिन्छ
0: सम्पर्क जयसवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक रामग्राम 5 परासी फोन 0785207646 र मोबाइल 9847041106
6: ए सुन न खाजा खान जाउ न यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
7: जान त जाउ अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाउ न
6: ए कुरो त्यसो पो त्यसो भए जाउ न त आरआर
8: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम माछाका परिकार हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक केराका विभिन्न परिकार ससेज भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट
7: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट रामराम 11 जमुआर हुलास अटोक्राको ठीक अगाडि
9: कारे पुरबहिया आज कपडा बडा साफ और चमकदार लगता कौने सरफ से फिचली हरे
10: काहे तोके नाई मालूम बका आजकल ते गांव से लेके शहर बाजार तक सब केउ गाय छाप सरफे लगावता जेकर खरीद में साइकिल इनाम मिलता साथ ही कपड़ा के दाग और धब्बा हटाए के बाते एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वाश प्रयोग कर जा जेमे आईफोन 13 उपहार के भी व्यवस्था बा
11: जी हाँ आप सब भी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कइल जा और नेपाली होली कह के पहचान दिखावल जा
12: उत्पादक साफी सरफ उद्योग माया देवी गाँव पालिका 1 पाकड़ी कपिल वस्तु संपर्क नंबर 9864 48 200
9: अरे वाह देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो
1: हाँ घरवा तो बढ़िया ने बन गई लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा
9: चला इतना बढ़िया सोच तोहर रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके
13: जी हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला
10: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल मोबाइल 9120425131
14: जय राम जी के हम नरहरी प्रेमी हरदम सुनल रहल जा अपन रेडियो परासी 90.2 मेगा

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा
1: जा

चंदन चुला कंगन चुला चंदन चुला चुला चुला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

0: जीवन को हर एक रंग में नेपालीपन को मिठास रंगाउँदै देश मेरो एवरेस्ट।
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: Extreme energy drink.
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.